ती कश दिचिनी बेमी बर तुम मंदिचिनी खिलाली जाऊनम खिलाली जाऊनम खिलाली मंकी ती हे रावनम खिलाली खिलाली जाऊनम खिलाली।